0: Ah, life in Pala is good. But sometimes you do have to go other places. When you do, we've got good news. Res Radio 91.3 is now available on iHeartRadio. That means whether you've got an Android,
1: an iPhone,
0: a BlackBerry,
1: an iPad,
0: an Xbox, or just about any other streaming device, there's an iHeartRadio app for you to listen to Res Radio just about anywhere. You can find the app for your device at iHeartRadio.com. Res Radio 91.3 and iHeartRadio, a match made on the internet.
2: शमस ताहम को कुमान निश्मलाह की के ताम ताम कते मवई कला अमाया या या अमाया या या चमाय वो चमा की आ चमाय वो चमल मोके नो पिशन ना कमी यो अमाया या या अमाया या या हे इमो यमी वाए इमो यपु कवि हे इमो यतोन के शमाया या या हमाया या या शमिश ताहं को पंगा निश्मलाह की के ताम ताम कते मवी कला हमाया या या हमाया या या चमाय वो चमा की आ चमाय वो चमल मुखे नौ कृष्ण ना कमी यो हमाया या या हमाया या या

आया शमशता हमको पुन्ना निष्मला की केतम नाम कथे मवी कला हम आया हम आया चमाय वो चमा की आय चमाय वो चमल मुखी नौ कृष्ण ना कमी।